ऐं सिमट पयो शंकर एकाठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप जंपव अबर अच्छा मेरी तुम करो सिख अवार असिख संगरो दुष्ट जेते उठ बत उत पाता शकल मलेश करो रण काता जी अस्तु तब सरणी।

गमाता ग्रंथ करा पूर्ण शुभराता किलविक शक्ल देहे को हरता दुष्ट दुखियन को शय करता श्री अस्तुज जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वाशत फल पावे सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अडिल सुनै गुंग जो जाहे सुरस ना पावई सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पो

0: is East FM, Kenya's premier Asian mix.
1: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ. जो जो सवाल मैं तुमसे करूँगा, उसका जवाब सच सच देना. Done,
2: done,
1: done. अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है?
2: है?
1: मैंने पूछा, बागों में बाहर है?
2: है.
1: गर्मियों की निहार है?
2: है.
1: तो तुमको मुझसे प्यार है?

0: So today's trending news when it comes to Salman Khan is that a snake was found at Salman's Galaxy apartment in Mumbai. और जो रेस्क्यूअर थे उन्होंने उसको सेफली निकाल दिया. अब ये ट्रेंडिंग न्यूज़ बन गई है. मुझे नहीं पता ये स्नेक कैसे पहुंचा वहाँ, बिकॉज़ आई नो हिज हाउस इज़ लाइक ऑन द फर्स्ट फ्लोर एंड दिस हैपेंड जस्ट यस्टरडे एंड इट्स स्कैरी एट द सेम टाइम, यू नो, कि कैसे पहुंच जाता है स्नेक कितना ऊपर तक, बिकॉज इफ दे आर इट्स अ बिल्डिंग विच इज़ यू नो वेयर स्टार इज स्टेइंग और इवन इन जनरल इट्स क्वाइट अ पॉश बिल्डिंग. आई एम श्योर द सिक्योरिटी एंड द क्लीनिंग प्रोसेस इज क्वाइट गुड ऑन डे टू डे बेसिस, बट देन या इट्स अ बिट scary. So police constable Manoj Kate, who was on duty at Galaxy apartment, reportedly alerted the local snake rescuer Vicky Dubey after noticing the reptile in the area, and when they got the information they all rushed and rescued the snake swiftly and calmly, and he carefully tracked the reptile also and saying that it was quite poisonous. So it's not only for Salman, I'm sure the building mein aur bhi residents hain, unke liye bhi thoda sa scary hai. So snake sightings itni are not uncommon in Mumbai. कहीं ना कहीं सीजनल वेदर चेंजेस होते हैं, मानसून पीरियड्स होता है, तो दे काइंड ऑफ यू नो गेट इनटू दीज रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस शेल्टर के लिए या खाने के लिए. तो हो सकता है उनको लगा होगा चलो भाई सलमान के घर चलते हैं, बिरयानी तो मिल ही जाएगी चाय के साथ. ये कहीं सलमान ने खुद कहा इंटरव्यू में कि मेरे घर में जो भी आता है वो बिना खाना खाए नहीं जा सकता. तो आई एम श्योर स्नेक ने भी कुछ ना कुछ तो खा ही लिया होगा बेचारे ने. सो दिस इज़ अ ट्रेंडिंग न्यूज़, बिकॉज आजकल के हमारे न्यूज़ में यही सब कुछ ट्रेंड कर रहा होता है. व्हाट्स कमिंग अप इज फैक्ट्स टू शेयर विद यू इन अ बिट. कीप इट ईस्ट एफएम, दिस इज द रश विद निलोफर.
1: ईस्ट एफएम, केन्याज़ प्रीमियर एशियन मिक्स. दीज़ टॉप जॉब्स आर वेटिंग फॉर यू on myjobsinkenya.com.
2: Ocala is expanding into Kenya. We are building our East Africa team and looking for a country director to establish and lead Ocala Kenya. Bachelor's degree in a relevant field and 8+ years leadership experience in biodiversity, ESG, environmental consulting, natural resources or related sectors is required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
1: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com, Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews.

Who is this star taken off the movie Bhoot Bangla playing from East FM, Kenya's premier Asian mix. This is the City Lights with Vishal. And right now, we were talking about the movie Welcome. And you have the first one, which was the first Welcome. Thi, and you have to tell me the two songs. That's your mix of each challenge. You have to tell me the two songs taken off the movie Welcome. And iske saath hi ek cheez main zarur batana chahunga and I would like to shed a light on is ke obviously humko pata hai ke kal desh mein hamare desh mein kya hua but it's very very important ke mis information na spread ki jaye jo bhi agar aapke paas koi information hai please do verify it normally kya hota hai na ke hum agar kuch humko message aa gaya then we forward it aisa nahi hai ke jaldi jaldi forward kar dena please ek bar verify kar lo information if you don't have a verification source कंफर्म कर लो अपने दोस्तों के साथ अपने रिलेटिव्स के साथ ये सच है कि नहीं बिकॉज अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन इज बीइंग स्प्रेड एज वेल जब ऐसे हालात होते हैं सो प्लीज़ डू नॉट स्प्रेड द मिस इन्फॉर्मेशन एंड इसके साथ ही मैंने बोला था दैट दिस इज वेरी स्पेशल वुमन हु इज सेलिब्रेटिंग अ बर्थडे टुडे एंड आई वुड लव टू विश हर एंड दैट्स गोना हैपन सून बट कौन से ये गाने हैं दो गाने दैट आई एम लुकिंग फॉर द मूवी कुड बी एनी सॉन्ग एनी टू सॉन्ग्स सो शेयर योर आंसर्स विद मी ऑन 0701106106

0: नच बलिए टेक केन ऑफ द मूवी आई थिंक कौन सी थी ये झूम बराबर झूम एंड इन द वोकल्स ऑफ शंकर महादेवन प्लेइंग फॉर ईस्ट एफएम केनिया प्रीमियर एशियन मिक्स दिस इज द सिटी लाइट्स विद विशाल एंड जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि यू नो व्हाट दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल वुमन हु इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे टुडे एंड दैट इज नन अदर देन माई मदर सो हमारे एक्चुअली ना बर्थडेज लाइन पे आते हैं So 13th was mine and then 16th was my father's and then 19th today aaj mere mom ka birthday so happy birthday mom and you are my world so thank you so much for everything bahut bahut dhanwad toda and yes जो मॉम होती है वो हमेशा स्पेशल होती है जैसे हम हमेशा बोलते हैं इवन ऑन मदर्स डे हमने एक रील बनाई थी ऑन अपना पंजाब एंड वी कंग्रेचुलेटेड ऑल द मदर्स एंड एक चीज़ है कहावत है दैट गोज लाइक दिस के गॉड कुड नॉट बी इन एवरीवेयर सो दैट इज़ व्हाई ही क्रिएटेड अ मदर गॉड कुड नॉट बी इन एवरीवेयर सो दैट इज़ व्हाई ही क्रिएटेड अ मदर सो हैप्पी बर्थडे मॉम And once again, thank you very much for everything. And इसके साथ Your Mix of Beat Challenge is also going on. Welcome movie के दो गाने कौन से गाने हैं ये Fastest Finger First मेरे को already मिल गया है Sangeeta. You have given me the correct answer. So has Jayshree. Thank you so much for your answers and for your company. बहुत सारे और जवाब हैं. I always say this that please always do give in your names when you're answering the question. So कौन से दो गाने do you remember taken off the movie Welcome?
1: East FM. Kenya's premier Asian mix.
2: We unlocked Gava for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov. Available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.

0: Playing for East FM, Kenya's premier Asian mix. This is the City Lights with Vishal. And हम welcome movie के बारे में बात कर रहे थे. And I mentioned to you that about हम एक ऐसे कलाकार के बारे में बात करेंगे who actually is one of the most amazing actors, character actor हैं वो. And he has done so much of work. And that's none other than Nana Patekar. So मेरे father ने मेरे को ये चीज़ बताई थी long time ago, many years ago. I think इस बात को almost 10-12 साल हो गए होंगे. एंड उन्होंने कहा था दैट यू नो हम नॉर्मली क्या होता था वी लुक एट शाहरुख खान और अक्षय कुमार एंड देम चार्जिंग ह्यूमंगस अमाउंट्स ऑफ मनी टू मेक अ मूवी बट एक ज़माना था जहाँ पे नाना पाटेकर साहब ने 1 करोड़ मांगे थे टू एक्ट इन अ मूवी ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एक्टर्स हु एक्चुअली सेड दैट यू नो वॉट दिस इज गोइंग टू बी माई फीस एंड द डायरेक्टर्स द प्रोड्यूसर्स एवरीबडी ओब्लाइज टू इट उन्होंने कहा दैट यू नो वॉट येस ऑफकोर्स वी विल गिव यू द अमाउंट एंड द मूवी वेंट ऑन टू बिकम अ सुपर हिट एंड यू नो आजकल कैरेक्टर आर्टिस्ट को इतना सीरियसली नहीं लेते बट आई थिंक सम ऑफ द कैरेक्टर आर्टिस्ट जो थिएटर एक्टर्स भी हम उनको बुलाते हैं दे आर वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एक्टर्स दैट वी हैव एवर गॉट फ्रॉम द बॉलीवुड मूवी इंडस्ट्री जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव गॉट जैसे मैंने बोला नाना पाटेकर साहब वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ओम पुरी ही इज डन ट्रेमेंडस वर्क वी हैव गॉट अमरीश पुरी साहब एज वेल I don't know agar unhone theater kiya tha but I thought he is one of the most amazing actors then we've got the late Irfan Khan who was an amazing actor as well so I think coming out of theater and then going into movies wake theater mein normally kya hota hai na koi retake nahi hote And I have huge respect for the people who do theatre. मैं भी करता हूँ So उधर कोई retake नहीं होते उधर कोई pause moments नहीं होती उधर कुछ नहीं होता It's just one thing that your own stage गलती हुई तो हुई So you have to make sure that you don't make a mistake. So we've got a couple who are celebrating their anniversary today and that is none other than Sangeeta. He is wishing Sangeeta and the husband a very, very happy anniversary to you guys. And the next song is coming up for you.
1: All the great songs that make your day.